0: साथ किसे दे किछ नहीं सब चले चला जिन तू मेले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए
1: जन नाम
0: सतगुरु पेटे हर नाम तेरा।

0: जलता जिया पूरिया लो आकार आके सो तू अजाने
1: नानक भगता पुख शलान सच नाम आदार सदा आनंद रहे दिन राती सदा आनंद रहे।

बास बस तंगे मुकुरमा है जैसे छाय तैसे गी हर बसे नरंत कटकी हो तो बाई बाहर।

0: अरबी तुर्की पारसी हो कहूं पहल विपस्त विशेष करते कहूं देश बाकी
1: कहूं राम राज विद्या।

जीव आत्मा दे पास केड़ी वस्तु पहुंचदी है? हजूर कहंदे ने गुर का बचन बसे जी नाले। ए जीव आत्मा तक पहुंच सकदा है गुरु दा बचन। गुरु दे बचन तो भाव है गुरु दा शब्द, क्योंकि हर पवित्र आत्मा दरगाह विच बैठी हुई अपने प्यारियां पासों मित्रां पासों ए मंग करदी है। क्योंकि धन गुरु नानक पातशाह जी ने भी ए मंग कीती है, मेरे मित्रों ऐ मेरे प्यारियो, संमत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन असीसड़ियां। ते असीसां केड़ियां हन? हजूर कहंदे ने मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जीओ। वेखना भाई मेरे पिछों किसे ने रोना नहीं, दुख नहीं मनाना। जे मेरे नाल सच्चा प्यार करदे हो तां मैं पिछे मेरे पिछे कीर्तन करना मेरी याद में। मैनू असीसां देनियां कीर्तन दियां, क्योंकि कीर्तन दियां असीसां ही जीव आत्मा तक पहुंचदियां हन। इसलिए हजूर कहंदे ने संमत

परमेश्वर का रूप आज एक अलौकिक आप चोज वरता रहे हैं। सच्चे पातशाह जी की उस्तुति सुन के एक बैरागी वैष्णो मत का साधु दर्शनों लई आया, आके की वेखदा है कि सतगुरु जी दे हाथ विच गुटार पंछी है, दूजे हाथ विच बाज फड़िया होया है। उस बाज ने गुटार दे मास नू त्रोड़िया है, फिर दोबारा तोड़िया, बल्कि जद तीजी वेरा गुटार दे मास नू तोड़िया तां बैरागी दे मन विच बड़ी शंका आई कि मैं तो सुनिया सी कि सतगुरु शांतमई दयालु अते दयावान हन, पर इना दे चित विखे तां बड़ी कठोरता है, रंचक मातर भी दया नहीं, गुटार तड़प रहा है, ते जीउंदे गुटार दा मास बाज कोलों तुड़वा रहे हैं। अंतर जामी सतगुरु जी ने साधु दे हिरदे दी शंका जान के वचन कीता, हे संत जी, आप जी दे मन विच जो संशा उठिया है ना, आप नहीं जानते कि इना दे पिछले जन्म का की संबंध है। ए जो गुटार है राजी दा वजीर सी, जो बाज है ए पिछले जन्म विच वड्डा जिमीदार सी। जिमीदार ने अपना पिंड वसाया होया सी। इस वजीर ने झूठी तोहमत लगा के इसनू पिंड तो बाहर कढ़वा दिता, पिंड उजाड़ दिता, पर अपनी मेहनत और सच्चाई दे सदके इसने एक होर पिंड वसा लिया। वजीर ने फिर ईरखा करके इसका पिंड उजाड़ दिता। जिमीदार ने साख संबंधियों की मदद के नाल, अपने मित्रां की मदद के नाल, अपने रसूक नाल फिर एक पिंड वसाया, पर राजे दे वजीर ने वैर भाव रख के तीजी बार भी पिंड उजाड़ दिता। क्षमा पा के इन्हां दोनों की मृत्यु हो गई। जिवें बाणी विच लिखिया है, जेहा बीजे सोदणे करमा संदड़ा खेत, ज्यो ज्या कोई बीज बो के जांदा, ज्यो जे कोई कर्म करके जांदा, निरंकार उधर ही भेज देंदा। इसे लई हजूर कहंदे ने, भाई देवत्यां वाले जे कर्म करोगे तां निरंकार देवत्यां वाले पासे भेज देगा, ते जे मनुष्या जन्म प्राप्त करके पशुआं वाले कर्म करोगे तां फिर ए पौर पशुआं वल चला जाएगा। 84 दा गेड़ तैयार है फिर तेरे लिए। कर्मा अनुसार ए समा पा के दोनों दी मृत्यु हो गई। वजीर नूं अगला जन्म गुटार दा मिलिया, ते जिमीदार नूं बाज दा जन्म मिलिया। अपना बदला लैण लई बाज इस दा पिछा कर रहा सी, ते उड़दी गुटार शरण विच आ गई है साडे, ते बाज भी परे आके बैठ गया। अंतर जामी सतगुरु जी कहन लगे, भाई हुण ओदी अंतर आत्मा दी आवाज असी सुनी जो कह रहा सी कि गरीब निवाज, इस पासों मैं लेखा लेना है, इसने मैनू तीन वेरा उजाड़िया है, ते तीन जन्म मैं इसका मास खावांगा तां ये मेरा बदला चुकेगा। इसने तीन वेरा मेरी नगरी उजाड़ी है, मैं हुण तीन वेरा इसनू खाना है, मेरा हिसाब पूरा होवेगा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहन लगे, भाई ये गुरु नानक दी शरण विच हुण आ गया, इस लई इस शरण दा भी तां कोई लाभ है ना। जो तीन जन्म विच बदला चुकाना सी, असी एक ही जन्म विच इन्हां दा बदला चुका रहे हां। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इसे जन्म विच मुका दिता है इन्हां दा हिसाब। हुण ये दोनों ही इस जूनी तो मुक्त हो गए। सतगुरां ने फरमाया कि संत जी

हर घर ए हो पहुंचा सदरे नित पवन ए शब्दा ता नित ही पै रही हन असी सुनिया अनसुनिया कर देंदे हां जदों कोई मनुख इस संसार तो जा रहा होंदा है कोई अर्थी जा रही होंदी है ओ सानू चेता करा रहा होंदा है ए मनुख एक दिन तेरे ते भी ऐसा आएगा ओ भी सदड़े दे रहे दस रहे जदों मनुख सौ जांदा ना रात नू ए मौत विखाली दे जांदी है हजूर ने इस मौत नू नित परलों के है कि हर मनुख ते नित परलों आउंदी है ओ केड़ी आउंदी है जदों असी सौ जांदे हां तां मौत विखाली दे जांदी है दस जांदी है ए मनुख एक दिन सोमन होएगो लांबे गोड पसार एक दिन तू ऐसा समेगा कि कोई तैनू उठा ल ना सकेगा इसे लई सतपुरश कहंदे हन जदों सौ के उठिए ता इशनान करो भाई शरीर दी पवित्रता लई क्योंकि मौत भी खाली दे जांदी है ओ भी मौत जो नित परले है ए नींद है ते जदों श्वासां दी गंढ खुल जांदी है इस नू नमित परलों के है कि जदों श्वास समाप्त हो जान ता मनुख अगला कदम नहीं पुट सकदा उथे ही मिट्टी दी ढेरी हो जांदा है उच्चारण करो श्री घर घर ए हो पहुंचा सदड़े नित पवन घर घर ए पहुंच है सदड़े पै रहे हन जिमें बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले क्या करते सन भाई ए सदड़े गुरमुखां नू अमृत वेलो भी पैंदे हन उठ भाई गुरु के लाल ए मनुच्छा जन्म भी तेरा अमृत वेला है ते अमृत वेले उठ के इशनान कर सचखंड दे द्वार खुल गए हन गुरु जागदा होवे तू सुता होवे ता फिर प्रसन्नता नहीं भाई जे गुरु दी खुशी माननी है ता अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु ताके तेरा जीवन सफल हो जावे तेरा जमना मरना मिट जाए इसलिए घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिबरी ए सदा की कह रही हन ए सदा कह रही हन भाई सदनहारा सिबरी जिस वाहेगुरु ने तैनू भेजिया ना उसने सदना भी है मनुख एवें नहीं संसार विच आ गया अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दा कल्या होया है हजूर दी बाणी कह रही है जिहा चीरी लिखिया तेहे हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए ते जेड़ा कल्या होया आउंदा है जेड़ा किसे दा भेजिया होया आउंदा है ओ कोई जिम्मेवारी लैके आउंदा है कोई ड्यूटी लैके आउंदा है कोई काम करन लई आउंदा है ते अकाल पुरख वाहेगुरु ने भाई सानू संसार विच भेजा है भाई तू जाके सिमर सिमर नाम बारंग बार बारंग बार उस प्रभु दा सिमरन कर इसलिए तेनू सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया ए एवें नहीं मिल गया ए बड़ा अमोलक जन्म है भाई लख चौरासी परम दिया दुर्लभ जन्म पायो एक दस बंदियां दी क्यों भुगतानी होवे कितना समा लग जांदा है ते जिदी वारी चौरासी लख दे बाद आई होवे एक एक जून दी उम्र गिणीए ता कई जूना विच ऐसियां भी हन जिन्हां दी हजार हजार बरस उम्र है लख लख बरस उम्र है जिवें पहाड़ां दी ब्रिशां दी कई कई हजार बरस ते हजूर कहंदे ने भाई कितने युगां दे बाद तेनू ए मनुच्छा जन्म मिलिया होवेगा अंदाजा ला लै कि लख चौरासी
84 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਵਬੂਆ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੂੜੇ, ਓਏ ਮੂਰਖ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਵਾਸਦੇਵ ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸੀ ਮੂੜੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਮ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਵੇਂਗਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਇੱਥੇ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਘੜਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਨਕ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਧੜੇ ਨਿੱਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਤ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ओ कदम सुहावने हन, जो कदम सतसंगत वाले जाते हैं, जो कदम परोपकार ले किसी की सेवा ले किसी के भले ले उठते हैं।

चैन समझे सिद्ध हाथ ना आए। नानक अंगद को बप धरा धर्म प्रचुर इह जग मो करा अमरदास पुन ना।

0: सदगुरु
1: विजय पूर्व देवना जिस भी वस्त तिसे घर आवे बैठा सोधी पातशाह
0: रामदास सतगुरु
1: जंको मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग प्रभु को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जंको शिव मन गहना तजात कबिलास को
0: जंको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप
1: जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए कृपा।

गुरु साजी से निवाजी सास जीओ राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों श्री ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान स्वर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचमा स्वर जो है वो इसका वजीर स्वर है। इन दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नु असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र दा ताल है, ताल बदल गया है, इस नु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदर दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ए ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ दी धर्म धृग तांग दागड़ दी दिम दिरना, बागड़ दी ब्रिते बांग कागड़ दी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। ये साहब जी ने तराना गाया, तो इसका मतलब है दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने, सरगमा लगानियां और ताना लगानी, कुम किरना नाल दे ताल दागड़ दी दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना, ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इस नू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ, सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

अवस्था चो पैर कढ़िया ता पिता जी ने एक दिन बुलाया, कहने लगे नानक जे तो कोई कम करदा होवे, जे तेरे पास कोई कमाई का साधन होवे ता हुण मैं तेरी शादी बारे विचार करा। रिश्ते आउंदे ने पर शर्म आउंदी है, हां किसनू किवें करा। जिसका पुत्र कमाउंदा ना होवे उसदे विआह बारे बाप किवें हां करे। मैनू शर्म आउंदी है, सिर झुक जांदा है।

तृप्ता जी नहीं समझ सके। वो जदों अपनी चुप विच हुंदे ने तां माता पिता नूं शंका हुंदी है किधरे नानक नूं कोई बीमारी तां नहीं, तां वैद बुला लैंदे ने ते फिर वैद सद के इलाज करवाउंदे ने। वैद बुलाया, वैद जी पकड़ टंडोले बां, पर गुरु साहिब कहंदे ने भोला वैद ना जाणदा, कि ए वैद भी नहीं जाणदा ते करदे भी नहीं जाणदे कि मैनू कोई बीमारी है। ए सब समझ लैने मैं बीमार हां, पर करक करे के मन, मेरे तां दिल विच कसकां पै रहियां ने उस प्रीतम वास्ते, बस बीमारी तां इही। कदे जदों चुप हो जांदे ने तां आंढ गुआंढ वी कहंदे ने मैं तां काली जी नूं, और इन्हां नूं वी शक पैंदा किधरे भूत प्रेत ना चिंबड़िया हो, किधरे बाहरली साया ना हो। सियाणियां नूं सद के उस दा इलाज कराउंदे। हैरानी दी गल है जदों बीमारी लई वैद नूं सद्दिया तां वैद तां उपदेश लै गया, जदों भूतां प्रेतां वास्ते सियाणियां नूं सद्दिया ओह वी उपदेश लै गए। पर माता पिता ने उपदेश ना लिया,

नानक मैं तेनू इसलिए नहीं सदया कि मैनू उपदेश दे। मैं तो तेनू कहना सी कि जे तू कमाई करदा होवे तां मैं तेरा विआह करा। पिता जी कहन लगे देखना अपने खेत वेले पे ने, मैं कितने चा नाल सांभ रखे सन कि पुत्र होवेगा खेती करेगा, कितनी भूमि खाली पई है अपनी तो खेती कर। तो गुरु नानक साहब कहंदे ने पिता जी मैं जेड़ी खेती कर रहा उस विचों मैनू वेल मिले तां मैं तुहाडे खेतां विच खेती करा। पुत्र तू केड़ी खेती कर रहे भावें पिता जी नूं समझ नहीं लगी कि केड़ी खेती कर रहे ने, पर गुरु जी पिता जी नूं संबोधन होके दस रहे ने कि

जलती सब पृथ्वी दिसे आई, सारी पृथ्वी जलती हुई नजर आई। तो फिर चढ़िया सोधन तर चुलकाई, उन्हें इंसानों नु दुखी वेख्या सी, कारू के राज भुखी वेख्या सी, भोजन कीते तो बिना ही सौंदे सन बहुते लोग।

सब देश खाली हो गया, किसी को पैसा नहीं। ता किसी ने एक सलाह दी कि एक होर भी तरीका है, ये तो डर का तरीका सी हुण लालच का, कि जे कोई एक भी पैसा लिया के देवे मैं अपनी लड़की का रिश्ता और अद्धा राज देंगा उसे। जदों वेख्या कि किसी कोल भी पैसा नहीं, तां एक नौजवान मन चला अपनी मां दे पास जाके रोण लग पिया, कहिंदा मां राज मिलदा ते बादशाह दी बेटी दा रिश्ता। मां ने बथेरा समझाया कि मैं तां उम्र गवाई है इस राज विच, कदे सुख नहीं वेख्या, इसने तां गरीबां दा खून नचोड़िया है, कदे किसे नूं सुख नहीं दिता, तूं की उम्मीद करदा है। झूठी गल ते इतबार ना करता, खेड़े पै गया कि किधरे कोई लको के रखिया हो। बहुत दिन जिद फड़ी रखी तो मां ने दसिया कि मेरे पास तो नहीं रखिया, पर जदों तेरे पिता नूं दफनाया सी तां उसके मूंह विच एक पैसा रखिया सी। कवर खोद लै, उसके मूंह विचों कढ लै, वह तां हुण रस्म पूरी हो गई। जे वो तेनों मिल जावे, कहंदे ने उसने इसे तरह कीता, अपने बाप की कबर खोद दिती, उसके मुरदे शरीर विचों पैसा कढ लिया, कारू दे अगे चाई चाई जाके रखिया। उसने नाले तो उसनू बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, नाले पैसा ले लिया। पुछया कित्थों लिया है, उसने दसी गल सारी कहानी, तां कारों ने सारियां कबरां खुदवा दित्तियां सी।

नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों सिद्ध मंदरी विच पुजे, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे अमोलक दरगाही बचन सुन के सिद्ध बड़े प्रसन्न हो। सिद्धां ने बेनती कीती कि जिस परमात्मा दी कथा अकथ है अते जो परमेश्वर सारियां नूं रिजक दे रहा है, लैण वाले थक जांदे हन, देण वाला कदे नहीं थकदा। ओ परमेश्वर जो अनथक है, गरीब नवाज कृपा करो, सानू दसो ओ साहब कैसा है, उसकी साहबी कैसी है, उसका नाम कैसा है। तां धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, साचा साहिब साच नाए, ओ सच्चा साहिब है, उदा नाम भी सच्चा है।

राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए, इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड्डी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे, जे अंब दे ब्रिश ते बैठा तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा है, जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी दा कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ए भी आत्मा दी खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक दी लोड है, साडी आत्मा नू ही परमेश्वर दे नाम दी लोड है। ओ नाम दा भोजन छकदी है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन दी भुख लगदी है, पर ओ भोजन नाम दा छकदी है। उच्चारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तो की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए उस तरह एवं किसी नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं होंदा। चंगी तरह शान बीन कर लैनी चाहीदी है भी किधर जांदी है। ता राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया ते राणी ने समझा भई हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है, राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नू त्रयास आया भई चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदी, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है ना। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाओ चुक के घर ले आंदी। भई पुछांगे भई तेरी दूजी खड़ा किथे है, ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नू बंद कर दिता। राणी जदों कीर्तन सुनदिया कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नू की जवाब देवांगी, जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ाम किथे है, तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाओ मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया तो राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री। सारी संगत ने जदों

जैसे सर्प दी आरजा है किसे कम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है। आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे कम नहीं आउंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे कम

ये पहली विशेषता ही गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश दिहाड़ा ते है पर बरसी नहीं, ना वो मरता ना हम डरिया, ना वो मरे ना होवे देंदा रहे। गुण एहो ना ही ना को हो ना को हो गज की आखो ना कोई एहो जा होया ना होए। गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगे हुए ये 400 साल है ये प्रकरण महाराज जी ले लेने से पहली विशेषता ही जिन्ने अवतार आए गए गुरु नानक गया नहीं गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द रूप सदा ली धरती ते टिक गए। दूजी विशेषता ही पांच मिनट च बोल के समाप्ति दूजी विशेषता ही धरती ते जिन्ने ग्रंथ ने ध्यान देना सारे ही सत्कार योग ने।

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच।

असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार असंख मौन लिवलाए तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गड़बड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन।

आखह ब्रह्मे आखह इंद आखह गोपी तय गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध।

गावै तुहनो पौन पणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से ईत नो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बीचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है, पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जीवत सिदी वडियाई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग दोयकार चलावह लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान, ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडान, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस।

सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौं कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे इको ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। जियो डर

पहला। यानड़िए मानड़ा काय करे हैं, अपनड़ कर हर रंगो की ना माने हैं, सौ नेड़ तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं। पैकिया देह सलाइया नैनी भाव का कर सिंगारो, ता सुहागण जानिए लागी जा सौ तरे प्यारो।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर गलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल थल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावां तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे।

महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरणत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज से तजकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप सुजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट तरह तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहिर हो ताके ताप तन कुमो हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांश्त फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई सुने मूढ़ चितलाए चतरता आवई। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो यहाँ की एक बार चौपई को कहे। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो यहाँ की एक बार चौपई को कहे। राम कलीम हलाती जा आनंद को अंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया। शब्दो ता गावहो हरि के रा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारणा। सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनोह विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरे घरता तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां एह वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार हो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारियां पंच दूत।